सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूं मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13111.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा के।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है जवार भाटा और गाने के बोल है तुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
0: नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं जिला विदिशा नगरी से।
0: कौन सा गाना सुनना?

0: हेलो
1: हाँ जी
0: राधे राधे
1: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम सिंह है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैम ये आन मिलो सजना मूवी का नाम है और रंग रंग के

0: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका? मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
1: सर नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गीत सुनना, पिक्चर का नाम है हनीमून, गीत के बोल है आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो ऑफ में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू,
1: यू वेलकम।

0: है, नाम क्या है आपका?
1: महेंद्र वर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: दिया गारमेंट।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना मैं नदिया के पार पिक्चर का सुनना चाहता हूँ।
0: वो किसका सुना रहे हैं आपकी?

वक्त हो चुका है 10:40 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएफएस पर।

0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बढ़िया गाना सुन लेते हैं।
0: हाँ जी बताइए।
1: काली तेरी चोटी।
0: काली तेरी चोटी।
1: चोटी चोटी
0: चोटी
1: जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
1: योगेश जांगड़े, विनयपुरा, छत्तीसगढ़।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सिलसिला से सुनवा देंगे, देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: वेलकम।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: जी नाम क्या है आपका?
1: जय किसान।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? मैं गंगापुर सिटी जीआर गारमेंट।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो बी में वो है बीवी नंबर वन।
0: ओके तो सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर।
1: हेलो नमस्ते जी।
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: सावनकर गंगाधर।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: धर्मात्मा।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: पाल से।
1: कहाँ से?
0: पाल से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैम राजस्थानी गाना है ना, पागड़ियो।
1: पागड़ियो। ओके सर, सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: आसाराम जानम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से, अम्बेडकर धर्मशाला पास से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मिलने की कोशिश करना, वादा कभी न करना, भजन में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमा।

0: है आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका सर?
3: राम परमदास।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैडम हम यूपी से बात कर रहे हैं।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: यूपी से प्रधान।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आप।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: हंडी राम गुजर बोल रहा हूँ, काम गुजर क्या थे?
0: सर बहुत दिनों में कॉल किया है, आज आपकी आवाज बहुत दिनों में सुनी।
1: बहन जी कॉल तो करता हूँ पर मेरा तो रिसीव नहीं होता है।
0: नहीं सर आपका कॉलिंग
1: 9:30 से कर रहा हूँ, फिर फोन ही नहीं उठ रहा।
0: नहीं सर 9:45 खोला है मैंने अभी फोन।
1: हाँ जी
0: हाँ जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो है जितनी चाबी भरी राम ने उतना करे खिलौना।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडी कॉल।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जीतू भाई ठाकुर।
1: कहाँ से बात कर
0: रहे हो? गला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हफ्ते हफ्ते कब जाए?
1: ठीक है सर, सुना।

0: तो
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात करूँ?
0: एरिया।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अमित सैनी का।

तो वक्त हो चुका है 10:43 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: तन्नू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरा होने लगा हूँ।

0: कृतुं महादाय सूर्य कोटि सम प्रवाह निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए।
1: लाला कैलाशनाथ मल्होत्रा।
0: अथ कैलाशनाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुंब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम?
2: रंजीत कुमार मल्होत्रा।
0: रंजीत कुमार मल्होत्रा पौत्र सर्व प्रसिद्धि प्राप्त रस्तु। बच्चे की दादी का नाम?
3: आशा मल्होत्रा।
0: आशा मल्होत्रा पौत्र आयुष्मान भव। बच्चे के पिता का नाम?
4: राज मल्होत्रा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी. संपर्क करें 8005598377. इसके अलावा 9983413111.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी.
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है. मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि. सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान. सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस. ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है. वर्तमान में एडमिशन ओपन है. स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान. ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है.
4: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1 बज चुके हैं. इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का. मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक. दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस. दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश. अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो DS पर.

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून नहीं है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सर।
1: सुमन जी, सबसे पहले अपन बात करें नवजात शिशुओं की जो देख रेख है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। आप एक महिला हो, आपको ज्यादा बहुत अच्छे से इस चीजों का इस विषय पर ज्ञान है।
0: जी हाँ जी सर, देखिए सबसे पहले तो ये होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही इस माँ के मन में बहुत सारे सवाल ही होते हैं, इस बच्चे की देखभाल मैं कैसे करूँ, इसका पालन पोषण कैसे करूँ, तो इसको कैसे उठाऊँ, कैसे रखूँ, कैसे इसको स्वस्थ रखूँ। तो सबसे पहले तो बच्चे की होल्डिंग का आता है कि बच्चे को, माँ को नई नई जब माएँ पहली बार बनती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि बच्चे को किस तरह से प्रॉपर तरीका उसको क्या है पकड़ने का। तो हमेशा बच्चे को गर्दन के सहारे से और पीठ के यहाँ इस तरह से एक हाथ गर्दन पर और एक हाथ उसकी पीठ पर इस तरह से सहारा देकर के बच्चे को उठाना चाहिए, क्योंकि जिससे उसकी गर्दन को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। क्योंकि गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां होती है वो बहुत कमजोर होती है और बच्चे का जो सिर की तुलना में उसके शरीर का की तुलना में उसके सिर का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो जिसकी गर्दन जो कहते हैं ना गाँव में लेडीज कहती है उसकी गर्दन नहीं रुक रही है अभी, तो वही चीज है कि वो प्रॉपर वेट को नहीं सहन कर पाती। तो इस तरह से एक हाथ अपने गर्दन पे सपोर्ट करें बच्चे का और एक उसके पीठ पर, उसी अकॉर्डिंग बच्चे को उठाएं।
1: बिल्कुल, वो कुछ समय के लिए जो प्रॉपर जो बॉडी होती है बच्चे की, नवजात होता है वो, तो उसको उठाने की सावधानियां बहुत ही जरूरी होती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये था सबसे पहले कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है और क्यों आवश्यक है।
0: सर ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले होता है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा जिसको कराने से आजकल की जो एजुकेटेड महिलाएं हैं वो घबराती हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल एक भ्रांति जैसी है। देखो बच्चे का जो दूध होता है माँ के लिए, वो माँ का जो दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। जो बच्चे के जन्म के साथ ही जो एक पीला गाढ़ा दूध आता है माँ का, जो स्टार्टिंग जन्म से लेकर 2-3 दिन तक आता है, वो बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी होता है। उसको हम इंग्लिश में हमारी जो भाषा है उसमें कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो जो कोलेस्ट्रम है वो बच्चे में उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं और बच्चों को इम्यूनिटी प्रदान करता है वो दूध। प्रॉपर अगर डायरेक्ट अगर हम कहें तो सीधा इम्यूनिटी देता है बच्चे को, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो इसी दूध से, माँ के दूध से बच्चे को मिलती है। आपने देखा होगा जिन बच्चों को माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिलता वो अक्सर बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो जो ये माँ का जो ये पहला दूध है यही जो बच्चे को उन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो ये देना बहुत ही जरूरी है। मैं तो इसको मानती हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही ये माँ को आप जितनी जल्दी माँ के दूध से बच्चे को लगाओगे उतनी ही जल्दी माँ और बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है। उसी से क्या होता है कि बच्चे एक अपने आप ही दूध बनने लगता है। लेडीज कुछ महिलाओं का कहना ये होता है कि साहब हमें दूध नहीं आ रहा है या कम, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग का अभाव होता है। जैसे माँ बच्चे को जितना ज्यादा दूध पिलाएगी, अपने बार बार अपने पास लाएगी, अपने बार बार उसको लगाएगी नहीं आने के बावजूद भी, तो धीरे धीरे माँ को दूध आने लगता है। तो ऐसा नहीं है, तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो जाए आप बच्चे को बार बार दूध पिलाएं और जल्दी से जल्दी दूध पिलाना शुरू कर दें। और प्रथम 3 दिन का दूध तो किसी भी हालत में अवॉइड ना करें, उसे तो जरूर से जरूर ही पिलाएं।
1: अच्छा, थोड़ा सा बात करें अपन मौसम संबंधित, तो जैसे अभी सर्दियों का समय है तो इसमें बच्चों की देखरेख और उचित देखभाल में भी थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है।
0: हाँ जी सर, मौसम जैसे सर्दियों का मौसम है इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तो बच्चे को एक्स्ट्रा केयर के लिए इसमें बच्चे को प्रॉपर ढककर तो बच्चे को रखना ही है, ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे को ठंड से बचाना है। साथ ही बच्चे को रात को सुलाते समय बच्चे को हल्के से उसके तलवों पे, उसके सीने पे, उसके पैरों के तलवों पर सरसों की तिल्ली के तेल की मालिश जरूर करें, जिससे कि वो बच्चे को गर्माहट बनी रहे। और अपने पास माँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने माँ अपने सीने से चिपका कर बच्चे को सुलाए, जिससे कि माँ की हीट बॉडी की बच्चे को मिलती रहे।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने।
0: हाँ, स्किन के लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही जैसे कि अभी आपको हम ये बोलते हैं कि बच्चों को नाली का नाप जो बोलते ये आते हैं कि बच्चे को दूध पीने।
1: सुमन जी बात करें अपन तीसरी जो समस्या बच्चों में आती है अक्सर दूध पीने के बाद छोटे बच्चे उल्टियां ज्यादा करते हैं, अक्सर देखा भी गया है, तो क्या समस्या है और माओं को क्या ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ जी सर, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि बच्चों अक्सर ये माओ सामना करती है कि बच्चा दूध पिलाते हैं बच्चा उल्टी कर देता है साथ ही साथ। तो माओ को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाने के साथ उसको अपने कंधे पे लगा के उसके पीठ पर हल्के हाथ से थपथपाएं, इवन 10 से 15 मिनट तक। ये नहीं 2 मिनट 4 मिनट थप्पियां आपने लगाई और उसको हाँ ठीक है उसको डकारा गई, ऐसा नहीं होता है। 2 से 5 मिनट तक उसको प्रॉपर थपथपाएं। इसका रीजन ये कि बच्चे ने जो आपको दूध पिया है उसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो हवा गई है वो थपथपाने से वो हवा बाहर आ जाती है डकार के रूप में, जिससे बच्चे को खाने का पचाव प्रॉपर तरीके से दूध का पचाव हो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: ये जरूरी नहीं कि वो आपको हमेशा महसूस हो कि बच्चे ने डकार लिया, वर्व किया या नहीं किया, लेकिन कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक बच्चे को वर्व जरूर कराएं।
3: अच्छा, ये एक बड़ी समस्या आती है कि बच्चे को कितने अंतराल में दूध पिलाएं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो अपन को जता नहीं सकता किसी भी हालत में, तो मतलब कितने अंतराल में दूध पिलाना जरूरी होता है?
2: हाँ जी हाँ, बच्चे को, छोटे बच्चे ऑब्वियसली बोल तो पाते ही नहीं है, रोता है बच्चा, छोटा कहते हैं ना रोता है, तब तक बच्चा माँ भी दूध नहीं पिलाती है उसको, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन छोटे बच्चे अक्सर क्या है कि बच्चा रोता भी कम है, सोता ज्यादा है। छोटा बच्चा होता है वो मिनिमम मैक्सिमम 14 से 17 घंटे सोता है, तो बच्चा अक्सर सोता रहता है, माँ कामों में लगी रहती है। लेकिन बच्चे को कम से कम 2-2.5 या 3 घंटे के अंतराल पे बच्चे को दूध जरूर से जरूर पिलाएं। अगर बच्चा सो भी रहा है तो आप बच्चे को हल्के से हाथ से उसके पैरों पे, उसकी हथेलियों पे मार करके, थपथपाकर, हल्की सी नींद से जगाकर, पूरी तरह उसको जगाने की जरूरत नहीं है, हल्की सी नींद से जगाकर आप उसको जैसे ही दूध पिलाने लगेंगे बच्चा अपने आप फीडिंग करने लगेगा। तो कम से कम 2.5-3 घंटे के अंतराल में बच्चे को एक दूध जरूर से जरूर पिलाएं।
3: अगर साहब बहुत बढ़िया बात बताई आपने, देखो उसका जो पाचन शक्ति के बारे में भी,

0: किस तरह का खाना खाने से बचे और किस तरह का खाना खाएं?
1: देखो सर, ये है कि नवजात शिशु जब आता है तो माओं का अक्सर ये होता है कि उनको लाइट फूड दिया जाता है, हेल्दी, जिसमें अच्छे पोषक तत्व हो, जिस तरह से इजिली बच्चा माँ को हो जाए। अगर माँ को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो ऑफिशियली बच्चे को रहती है, तो बच्चा इजिली, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध और दलिया जो प्रॉपर कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो बच्चे की माँ है, नवजात शिशु की माँ है, उसको खाना चाहिए। उसकी रीजन है कि उसको भी दूध, जितना ज्यादा दूध मात्रा में वो लेगी, बच्चे को भी वो उतना ही ज्यादा दूध पिला पाएगी। तो दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, लड्डू है, प्रॉपर वो उन, क्योंकि बच्चे के जब उन्होंने गर्भ धारण किया है और बच्चे को जन्म दिया तो उनका थोड़ा शरीर में शारीरिक कमजोरियां पैदा हो जाती हैं, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए अच्छा पोषक तत्वों वाला खाना खाना जरूरी है और लाइट फूड खाएं, जिससे बच्चे को भी पचाव उसका अच्छे से हो सके।
0: जी गर्ग साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, अक्सर जो छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में बीमारियां जो होती है वो किस प्रकार की होती है और क्या क्या चीजों का गार्जियन को, जो संरक्षक होते हैं और माओं को ध्यान में रखना चाहिए?
1: सर, छोटे बच्चों में मोस्टली आमतौर पर बीमारी देखी जाती है नवजात शिशु में पीलिया की, कि नवजात शिशु को पीलिया हो जाता है, तो ये एक आम बीमारी है नवजात शिशु को पीलिया होने की। तो इस पीलिया से बचाव के लिए बच्चे को सुबह की सुनहरी धूप होती है, जो बगैर हवा वाली सुनहरी धूप, बच्चे को सूरज जब उगता है तो गुलाबी जो धूप होती है उसको बच्चे को जरूर खिलाएं। इसमें धूप खिलाते समय एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि बच्चे की जो आंखें होती है उसको या तो कपड़े से या कॉटन से ढक दें, और जो इससे, इस धूप से बच्चे को दो बहुत अच्छी चीज होती है, एक तो बच्चे को पीले से बचा होता है, दूसरा हमें भी पता है सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इससे बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं।
0: अच्छा, एक बात मेरे को बताएं आप गर्ग साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नाल होती है उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए? कई बार पकाऊ ले लेती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतना बहुत ही आवश्यक है?
1: सर, छोटे बच्चों की नाल से संबंधित ये रहता ही है कि उसको संभाल के रखो, लग ना जाए, झड़ ना जाए, जब तक झड़ तो बहुत केयर की आवश्यकता उसमें होती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे की नाल को केवल सूखा छोड़ना है, उसको गीला किसी भी हालत में नहीं करना है, खुला छोड़ना है, सूखा ही रखना है। तो इसके लिए हम बच्चे को, छोटे बच्चे को हम नहलाते नहीं है, अगर हम कुछ भी करते हैं उसको केवल स्पंज बांध देते हैं, यानी कि कपड़ों से ही उसका हाथ पैर उसके पहुंचते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर हमें साफ करके देती है बच्चे को, उसके बाद 7 से 8 दिन तक हम केवल बच्चे को स्पंज बांध देते हैं, यानी कपड़े से ही उसके हाथ पैरों को धीरे गीले गीले से पहुंच देते हैं। तो उसकी जो नाल है उसको आपको गीले होने से बचाना है, यानी कि उसे सूखा रखना है। जब वो सूखी रहेगी तो स्वतः ही 7 से 8 दिन में वो झड़ जाएगी, और उसके झड़ने के बाद आप उसे साफ पानी से धो सकते हैं। लेकिन बॉस, गाँवों में क्या होता है कि सर वो कहते हैं पक गई या कुछ हो गई, तो इसके लिए तो लोग घी हल्दी का भी यूज करते हैं, तेल भी लगाते हैं, काजल भी लगाते हैं, उसको सेकते भी हैं, तो ये एक गलत तरीका है। अगर आपको कुछ लगाना है उस पे, पकाव रख लिया, तो आप डॉक्टर की सलाह से उसमें स्प्रिट या न्यूस्प्रिन पाउडर होता है उसका ही यूज करें।

का ही यूज करें, क्योंकि ये सब चीजें जो आप लगाते हैं तेल वगैरह, ये क्या डायरेक्ट इन्फेक्शन होने का इसमें बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो वो इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इसमें डॉक्टर की सलाह से न्यूस्पिन पाउडर और स्प्रिट का ही यूज करें। इसके बाद होती है बच्चों को मोशन से लेकर भी समस्याएं आती हैं सर,

0: जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर बच्चा एक दिन में 7 से 8 बार लैट्रिन जा रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि बच्चों का जो इंटेस्टाइन होता है, उनका पेट होता है बहुत छोटा होता है, तो जब वो थोड़ा सा दूध पीते हैं उसी से वो तुरंत बढ़ जाता है। और जो उनके इंटेस्टाइन में एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्रेश होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके दूध पीने के साथ ही जो उसके पहले का जो दूध पिया हुआ है, डाइजेस्ट मिल्क जो पहले उसने पिया है, जो डाइजेस्ट हो चुका है और पोटी के रूप में जो वहाँ इकट्ठा होता है, स्पेस तो छोटा है तो एक ही चीज थोड़ी सी उसके लिए रहेगा ना, तो जैसे वो दूध पीता है तो वो उस प्रक्रिया की वजह से वो मिल्क ऑटोमेटिकली पोटी के रूप में बाहर आ जाता है। या तो दूध, कहते हैं ना बच्चा, कोई बच्चा तुरंत दूध पीते के साथ ही लैट्रिन जाता है, तो या तो दूध पीते के साथ ही या उसके थोड़ी बहुत देर बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। और कोई कोई तो इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है, और कोई कोई बच्चा है जो 2 से 3 दिन में भी एक जाता है, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया। अगर बच्चा टाइट नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं जा रहा है, आसानी से उसको कर रहा है और ब्लड नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट जाएगा तो बच्चे की ब्लड भी बाहर रहेगा, ब्लड बाहर रहेगा उससे उसके घाव होने के खतरे भी रहेंगे, तो ब्लड भी अगर बाहर आ रहा नहीं आ रहा है और वो टाइट नहीं जा रहा तो वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है।
1: जी, आपने शिशु के बारे में बहुत सारी जानकारी और सटीक जानकारी दी। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एक परिवार की नैतिक जिम्मेदारी होती है माँ की किस रूप से देखभाल करे, माँ को किन किन चीजों की उस समय आवश्यकता होती है?
0: सर, उस समय माँ को एक मॉरल सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको खुद को संभालना और एक बच्चे को संभालना दो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ होती है। गर्भधारण जब बच्चे को जन्म लेती है तो यूँ कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म हुआ है, उसका खुद का शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है उस समय, और बच्चा जो रात भर जगता है, तो उस समय उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसके पति की होती है, वो उसको मॉरल सपोर्ट करे, उसका साथ निभाए, रात में बच्चे को उसके साथ संभलवाए, और परिवार के सारे सदस्यों की ये जिम्मेदारी होती है उसको भावनात्मक सपोर्ट उसको दे और उसके खान पान और उसके स्वास्थ्य का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखे।
1: सुमन जी, रेडियो DS के माध्यम से आप जो हमारे सुनने वाले श्रोता है उनको कोई, अगर आप पूछना रह गया हो आपसे, ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं जो आपके मन में भाव उभर रहा हो, तो ऐसा संदेश आप हमारे श्रोताओं को जरूर दे सकते हैं।
0: सर, छोटे बच्चों को के लेके बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल। एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी, आजकल महिलाएं थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को डायपर पहना देती हैं अपनी थोड़ी सी बचाव के लिए। डायपर जरूरी है बच्चे को ठंड से बचाने के लिए, ये नहीं लेकिन आप पूरा दिन ही सुबह से शाम 24 घंटे ही बच्चे को डायपर लगा दो, ये मैं बताना ही चाहूंगी। दिन में आप कॉटन डायपर का यूज करो, जिसमें हम बोलते हैं लंगोटी, अपने गांवों में मिल जाती है सबको, उसी का ही दिन में यूज करें। और रात को आप प्रॉपर डिस्पोजल डायपर यूज कर सकते हैं, ठंड में आप डिस्पोजल, जैसे ये ठंड का मौसम है तो मैं इसमें नहीं कहूंगी आप लंगोटी यूज करो कि बच्चा भीग जाएगा और उसको ठंड लग जाएगी, तो इनमें आप डिस्पोजल डायपर यूज कर सकते हैं। और डायपर यूज करने से पहले आप डायपर ऐसी क्रीम होती है उसका यूज करें, या फिर नारियल का तेल, वो सब जगह अवेलेबल हो जाता है और बच्चे की स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप नारियल के तेल का बच्चे की स्किन के लिए यूज करें, और उससे डायपर लगाने से पहले उससे यूज करें जिससे कि बच्चे को रैशेस नहीं हो।
1: बिल्कुल, आप हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोता गणों को और हमारे जो नारी लोग सुनने वाले

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: तो सुबह हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम पुली विस्टी यादें।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। गंगापुर।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।

वक्त हो चुका है 3:55 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024 4475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को

गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। तभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149।
2: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: मेरा नाम पायल जा रहा है।
3: कहाँ से बात कर रहे हो पायल जी?
4: गंगापुर सिटी से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: होपलेस।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए गाना।
4: थैंक यू।

0: जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: सर ये उपलब्ध है क्या? डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक्स,
0: यू वेलकम।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद यासीन।
0: बात कर रहे हो? हेलो हेलो,
1: पाल से मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: चल छैया चल छैया छैया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो हेलो
1: हेलो भाई जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है गोपी कृष्ण और गाने के बोल है ये इश्क है क्या एक रोग बुरा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपको फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown, Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13-111.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी.
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है. मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस. ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है. वर्तमान में एडमिशन ओपन है. स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉल.
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: गुड आफ्टरनून मैम.
3: गुड आफ्टरनून, नाम क्या है आपका?
4: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से.
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी मैम?
4: बरस बरस बरखा, एक दिवा ऐसा भी मूवी का.
3: बरस बरस

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: सनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: लालसोट से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लूट
0: लूट
1: आप चलाते नहीं हो?
0: नहीं चलाया था कल, चला

0: हेलो नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, नाम क्या है सर आपका?
0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मावी जी से बोल रहा
1: हूँ। हाँ जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: यार बदलना जाना।
1: यार बदलना जाना
0: जी, मौसम की तरह।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं नसिया कॉलोनी वार्ड नंबर 9 से बोल रहा हूँ। मैम,
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म अनोखा बंधन, ओल्ड मूवी है, उसका गाना है ना, कितनी दूर क्यों है माँ।
1: कितनी दूर है क्यों माँ?
0: हाँ, कितनी दूर क्यों है माँ।
1: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी सर्वाधिक करेगा
0: जी।
2: भाभी माँ,

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जाने जा आ जाना।
0: ओके।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू
0: साथ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना लुट पुटे गया फ्रॉम द फिल्म डंकी। और एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि चांद आपने देखा है, चांद गोल होता है, लेकिन फैक्ट यही है कि चांद और धरती का रोटेशन इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि बचपन से अभी तक हम चांद का हमने सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, यानी सिर्फ एक ही साइड हमने चांद का अभी तक देखा है अपने आंखों से, दूसरे साइड हमने कभी नहीं देखा। आप सैड मत हो, अगर आपको एक से ज्यादा चेहरे देखने हैं तो फिर अपने एक्स का देख लो। मूड खराब नहीं करूंगा। चलो बैक टू बैक आपके लिए अमेजिंग गाने प्ले करने वाला हूँ। कितने गाने? 4। ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

0: फॉगी फॉगी मौसम है भैया, धुंध ही धुंध है, ओस ही ओस है। और इस वक्त गंगापुर सिटी में मैं अगर तापमान की बात, वेदर की बात, टेम्परेचर की बात ना ही करूं तो बेहतर है। तो किसकी बात करूं, बात करूंगा इस वक्त गाने की। मैं खिलाड़ी गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, लिरिक्स लिखा है माया गोविंद ने, कॉम्पोजिशन अनु मलिक ने, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट किया तनिष्क बागची ने। और ठंड बहुत है भैया, बातें कम करूंगा, गाने सुनाऊंगा अगले 3 बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: देखो, एक होता है सही समय, एक होता है गलत समय, और एक हो रहा है अभी का समय जो 9:15 से ऊपर है या नीचे मैं नहीं बताऊंगा, खुद से अपनी घड़ी चेक करो, चेक करो, चेक करो। इससे पहले आपने गाना सुना क्या लोगे तुम, बी प्राक की आवाज में। लिरिक्स लिखा था जानी ने और कॉम्पोजिशन भी जानी ने, लेकिन बी प्राक। जब फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया था तो उसमें एक बहुत ही शानदार सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर वो एक्ट कर रहे होते, जहाँ रणबीर कपूर कहते कि मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, आप पापा हो मेरे, और फिर वो डायलॉग आता है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। तो जब भी मैं बी प्राक के गाने सुनता हूँ मेरे को वो सीन याद आता है कि सुनाई दे रहा है। इसी बात पे चलो तीन गाने बैक टू बैक आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: जसमीन नौटियाल असीस कौर की आवाज में आपने गाना सुना राता लंबिया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन तनिष्क बागची भैया ने लिखा है। वैसे हाँ, फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, टाइम टू गो। कल मिलेंगे सुबह 9 से 10, पर आप कहीं मत जाओ, बने रहो हमारे साथ। गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो DS।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं आपको हिट फिल्म्स की दिलचस्प बातें बताऊंगी। अगर आप बॉलीवुड फैन भी हैं, तो भी आपने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए लौट के आऊंगी और बताऊंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरकर
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: सीतापुर सिटी की धड़कन रेडियो
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। एक बात बताओ, आप आंखें झपकाए बिना रह सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि पी के फिल्म में, जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, उसमें आमिर खान ने आंखें बिल्कुल भी नहीं झपकाई है। विश्वास नहीं है, वापस जाके देखो। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो।

0: गंगापुर स्थिति की धरकर
1: बॉलीवुड फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग बात, सिलसिला एक ऐसी अकेली मूवी है जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का रोल निभाया है। बाकी जितनी भी इनकी फिल्म्स हैं जिसमें ये सिबलिंग बने हैं, सभी में अमिताभ बच्चन वो हैं जिन्होंने बड़े भाई का रोल निभाया है। चलिए सुनते हैं ऐसी ही कुछ फिल्म्स के खूबसूरत गीत। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर स्थिति की धरकर

0: जाने भी दो।
1: क्यों भूखे हो तुम?
0: नहीं भूखे हैं।
1: हमें खाओगे?
0: नहीं खाएंगे।
1: तो फिर भागो।

0: गंगापुर स्थिति की धरकर
1: तेरे वास्ते, तेरे वास्ते गाना सुना आपने वरुण जैन, शादाब अल्तमाश की आवाज में, सचिन जिगर की आवाज में, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया। और सर्दियों वाली मॉर्निंग यानी विंटर मॉर्निंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनना कि विंटर मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड और बहुत ही ज्यादा फॉगी रहता है, जिससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है गर्म कपड़े पहनना, वुलन कपड़े पहनना। और कई बार जब हम ऐसे मुंह खोल के बाहर सांस छोड़ते तो हमें फॉग नजर आता है। आपको नहीं पता था ना, झूठ मत बोला, आपको नहीं पता था। ऐसे ही और बचकाने फैक्ट्स के साथ, इम्पोर्टेंट विंटर फैक्ट्स के साथ मैं वापस आऊंगा, लेकिन बैक टू बैक पहले तीन गाने आपके लिए।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डियर।
1: देखो अगर आपके गले में खराश है तो मेरे साथ रिपीट करो, चलो 1 2 3। नहीं नहीं ये पार्ट आपको नहीं करना है। अर्जुन वेली गाना सुना आपने फ्रॉम द फिल्म एनिमल संग बाय बब्बल बब्बल बब्बल जी ने। बहुत ही प्यारा गाना गाया भूपेंद्र बब्बल जी ने, लेकिन उससे भी प्यारा मैं एक स्पॉइलर तो है ही नहीं भैया। गंगापुर सिटी में अगर किसी ने, एक बंदे ने भी फिल्म देख ली, मतलब पूरे शहर ने भैया फिल्म देख लिया, और फिल्म एनिमल भैया 1,000 करोड़ के इतने करीब। बस मुझे यही फैक्ट बताना था, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, फिलहाल आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अमेजिंग गाने बजा रहा हूं मैं आपके लिए, 4 गाने बैक टू बैक।

0: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो डीएस।
1: देखो आप सज धज के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय, क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक।
0: गंगापुर सिटी की धरकर

0: गाने हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। हम हर सिचुएशन में गाने सुनते हैं, चाहे शादी हो, पार्टी हो, दिल टूटा हो, ब्रेकअप हुआ हो, चाहे हमें बहुत खुशी हो, हम क्रिकेट मैच जीते हो, गणेश उत्सव हो, मोटिवेशन चाहिए हो तो भी गाने। इसीलिए आपकी तरफ बहुत ही खूबसूरत गाना। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: 89.6 पे रेडियो DS।

0: बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो उसमें गीत और संगीत एक अहम भूमिका निभाता है। इन दोनों का रिश्ता कहें तो आत्मा और शरीर का ही है। आज के वक्त में अगर सिनेमा इतना सक्सेसफुल हुआ है तो उसका एक बड़ा रीजन है गाने। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आपकी ओर 89.6 DSFM पे मैं तनिषा।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. हिंदी सिनेमा में संगीत के लिए पहला अवार्ड नौशाद साहब ने 1954 में बेजू बावरा फिल्म के लिए जीता. इसके अलावा मदर इंडिया, मुगले आजम का मधुर संगीत भी हमें नौशाद साहब ने ही दिया है. चलिए सुनते हैं इन्हीं फिल्मों के कुछ गीत. 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: इसमें है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई के हासिफ साहब के शानदार डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज भी हम सभी के दिलों में है। ये हिंदी सिनेमा के सबसे सफल फिल्मों में से एक है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म के कुछ गीत 89.6 DSFM पे मैं तनिषा।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।